0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का

अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शुभ्र गंगा भाळी अर्थ चंद्र माती शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म भाळी अर्थ चंद्र माती शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा।

पाई भक्ता जाना, पाई भक्ता जाना ओळंगीती भाळी अर्ध चंद्र माती शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा।

सताती उधरी दिनाती नीला कंठा उधरी दिनाती नीला कंठा हरा हरा।

भाई अर्ध चंद्र माति शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा।

0: नमस्कार, मी शंतनु मोघे. दिवसाची प्रसन्न सुरुवात सकारात्मकतेची सुंदर साथ देणारी आकाशवाणी मुंबईची FM रेनबो वाहिनी 107.1 MHz वर.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले.
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते.
3: मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया. आप भी लगवा लो.
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर. सूर्य
6: घर. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी. झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ

0: नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। PM गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त

0: की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
4: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन।

0: रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
2: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आज़ादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE नीट CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 टू बिगिन टुडे इन लद्दाख एंड आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
1: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The same enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census of

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग मुंबई, सुप्रभात, नमस्कार एंड वेलकम टू एफएम रेनबो। और आप सुन रहे हैं आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग शो मस्त मुंबई, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और मुंबईकर्स, आज सुबह आपने एक आवाज सुनी है पहली बार, क्योंकि आज इस खूबसूरत शहर की प्यारी सी सुबह में एक नया रेडियो साथी, एक नया दोस्त जुड़ रहा है आपके साथ। जी हाँ, मैं हूँ आपका नया रेडियो मित्र साकेत, आपके साथ। सभी को मेरा प्रणाम। तो तैयार हो जाइए मुंबई, क्योंकि आज आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपसे करेगा बहुत सारी बात। फर्स्ट आर है मस्त मुंबई, और इस आर में थोड़ा नॉस्टैल्जिया आपको फील कराऊंगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर की हम बात करेंगे, और भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े दिग्गज गायक को भी हम याद करेंगे। और 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा दूसरा सेगमेंट नमस्ते भारत, वो भी बहुत होगा खास। तो चलिए आपकी सुबह को मस्ती से भरे, प्यार से भरे, और प्ले करते हैं ये एनर्जेटिक वाला गाना फ्रॉम द मूवी आर आर आर, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
5: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
4: क्या मूड आया है कहानी में,
5: या हो दिलकश गीत,
6: बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बनके बरसे रे।
5: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
7: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
5: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
8: सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा।
9: वेलकम बैक एंड यू आर लिसनिंग मस्त मुंबई ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। और मैं हूँ आपका रेडियो मित्र, नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। और मुंबई, हमारे कुछ बंधु शायद सोचते हैं कि ओहो इट्स मंडे, ओ नो फिर मंडे आ गया, फिर काम पे जाना पड़ेगा। आई थिंक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मंडे को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना चाहिए, है ना? क्योंकि वीकेंड हमने खूब इन्जॉय किया, दोस्तों से मिले, फैमिली के साथ वक्त बिताया, पार्टी की, घूमे फिरे, जो चीज़ें हमें खुशी देती है वो हमने सब करी। और अब मंडे, मंडे का मतलब एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई एनर्जी के साथ अपने काम पर वापस लौटने का दिन। तो इस मंडे, बल्कि हर मंडे, एक छोटा सा मोटिवेशन रखिए अपने साथ कि मुझे इस हफ्ते थोड़ा और बेहतर करना है, मुझे अपने काम पर थोड़ा और आगे बढ़ना है, जो सपना मैंने देखा है उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाना है। क्योंकि मेरा मानना है, जिस काम से आपको खुशी मिलती है, जो काम आप ईमानदारी से करेंगे, उस काम में आपकी मेहनत भी दिखेगी और बरकत भी होगी। और हाँ, काम से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद से प्यार करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए काम करिए, मेहनत करिए, आगे

पढ़िए, लेकिन अपनी जिंदगी को एंजॉय करना मत भूलिए। तो चलिए मुंबई, आपके मंडे को बनाते हैं थोड़ा और एनर्जेटिक, थोड़ा और म्यूजिकल और थोड़ा सा और मस्त। आ रहे हैं दो बैक टू बैक से गाने आपके लिए। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए 8657661071। म्यूजिकली योर्स, FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है, सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है, फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
1: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
2: क्या मोड आया है कहानी में,
1: या हो दिलकश गीत, आप तो जानते हैं हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
3: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
1: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना जहां बजता है हर तरह का संगीत, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
4: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
5: इंटरनेट बैंकिंग,
4: मोबाइल बैंकिंग,
5: व्हाट्सएप बैंकिंग,
4: ईकेवाईसी,
5: एनईएफटी, आरटीजीएस,
4: आईएमपीएस,
5: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
4: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: भाई आजकल एंटरटेनमेंट की सारी दुनिया है हमारे हाथों में. एक छोटा सा मोबाइल है और उसमें OTT एप्स है, यूट्यूब है, म्यूजिक एप्स है. जब चाहें जहां चाहें हम अपना फेवरेट कंटेंट देख सकते हैं और सुन सकते हैं. लेकिन मुंबई एक दौर ऐसा भी था जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, और उस दौर में हमारे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया होती थी एक छोटी सी प्यारी सी गोल्ड डिस्क, बोले तो CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क. आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स. और मैं हूं आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ. और आज CD की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज 17 अगस्त को 1982 में जर्मनी के एक शहर में एक फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने पहली कमर्शियल CD लॉन्च की थी. पहली कमर्शियल CD का निर्माण किया था. और फिर धीरे धीरे CD ने म्यूजिक और मूवीज देखने का एक्सपीरियंस ही बदल दिया. एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कहा जाता है भारत में दिसंबर 1987 में ग्रेट गजल गायक पंकज उदास जी का जो एल्बम था शागुफ्ता, वो पहली बार CD में रिलीज हुआ था. क्या दौर था ना वो. आज हम कोई भी फिल्म थिएटर में देखने जाते हैं, कुछ ही समय में बात OTT पर आ जाती है. लेकिन तब फिल्म देखने के कई महीनों तक इंतजार रहता था. फिल्म देखने के बाद कई टाइम तक इंतजार रहता था कि कब इसकी ओरिजिनल CD आएगी. और जब दुकान पर CD आ जाती थी तो बस पूछने की देर होती थी, भैया उस फिल्म की ओरिजिनल CD आ गई क्या. और मैंने तो इतना तक देखा है कि डेली लोग दुकान पे आके पूछते थे जब CD नहीं आई होती थी, भैया उसकी ओरिजिनल CD आ गई क्या. अब वैसे मैं भी उन लोगों में से एक था. और जब CD खरीद कर लेकर आते थे उस दिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था. रिपीट मोड पे हम उस फिल्म को देखते थे, उसके गाने सुनते थे. और CD संभाल कर रखना कोई छोटी बात नहीं होती थी. ज़रा सा भी स्क्रैच आ गया तो पूरी CD

का मजा खराब। और गलती से कोई दोस्त मांगने आ जाए तो पहले से 10 इंस्ट्रक्शन दे देते थे, भाई ध्यान से रखना, स्क्रैच मत करना, और हाँ जल्दी वापस कर देना। क्योंकि उस सीडी में सिर्फ म्यूजिक और मूवी नहीं होती थी, उसमें हमारी मेमोरीज होती थी। इंडिया में आजकल लगभग फिजिकल मीडिया का, सीडीज का जमाना खत्म हो चुका है, प्रोडक्शन अब नहीं होता। अब सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। पहले रिकॉर्ड्स थे, फिर रिकॉर्ड से कैसेट, सीडी से डीवीडी, पेन ड्राइव और अब स्ट्रीमिंग। लेकिन एक चीज है जो हमेशा से वही रहेगी, अपनी पसंद का म्यूजिक और सिनेमा देखने की खुशी। और अब इस नॉस्टैल्जिया के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके लिए प्ले करते हैं दो बैक टू बैक से शानदार से गाने। और हाँ, वापस आकर हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर की, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है, सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: मनोरंजन पूरे परिवार का, कनेक्टिविटी पूरे भारत की, BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में। 200 Mbps, 25 OTT, 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग, सीमित अवधि का ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800444 पर कॉल करें। BSNL, हर परिवार का भरोसा।

भाई ट्रेंड सेटर शब्द तो हम सभी ने सुना है। जब कोई इंसान किसी फील्ड में कुछ नया करता है, कुछ नया लेकर आता है और फिर वही चीज़ आने वाली जनरेशंस तक फॉलो करती है, तो हम कहते हैं कि इन्होंने तो एक ट्रेंड सेट किया है। और ख़ासकर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो ऐसे बहुत से ग्रेट डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स रहे हैं जिन्होंने ऐसी कमाल की फिल्में बनाई हैं, ऐसी नई चीज़ें लेकर आए हैं जिससे एक ट्रेंड सेट हुआ है और आने वाली फिल्म मेकर्स की जनरेशंस तक ने उन्हें फॉलो किया है। आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। और आज हम एक ऐसे ही ट्रेंड सेटर, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट फिल्म मेकर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने शिवाजी द बॉस, नायक, अपरिचित, आई और रोबोट जैसी शानदार फिल्में हमें दी। जी हाँ, समझ गए होंगे किन की बात हो रही है, ग्रेट इंडियन फिल्म मेकर, ग्रेट डायरेक्टर ऐश शंकर की। और आज ऐश शंकर जी का बर्थडे भी है, तो हमारी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शंकर सर। और हाँ, हम बात करें शंकर सर के करियर की, तो इन्होंने शुरुआत एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। शुरुआत इन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की और इन्होंने शुरुआत में कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। एक समय में तो ये एक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने शायद इनके लिए कुछ और बड़ा लिखा था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने डायरेक्शन में एंट्री मारी, साल था 1993 और फिल्म थी जेंटलमैन। ये इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी और फिल्म ने शानदार कॉमर्शियल सक्सेस हासिल की। और इसके बाद शंकर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई, इंडियन, जीन्स, नायक, शिवाजी द बॉस, रोबोट। और हर फिल्म के साथ साथ इनकी फिल्म मेकिंग का और टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ता गया। सोचिए, इनकी फिल्मों में केवल कहानी ही अच्छी नहीं होती, उस फिल्म को दिखाने का तरीका भी फिल्म दर फिल्म बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिल्म रोबोट जब ये बना रहे थे तो शंकर सर ने पहली बार हॉलीवुड के स्टूडियोज़ के साथ मिलकर काम करा और इंडिया में बहुत अच्छे विजुअल इफ़ेक्ट्स फिल्म में दिखाए। रोबोट फिल्म में 1500 से भी ज़्यादा VFX शॉट थे। और इससे पहले जो इन्होंने फिल्म बनाई थी अपरिचित, जो लगभग हम सभी ने देखी है, जिसमें एक इंसान के अंदर तीन तीन पर्सनैलिटियाँ होती है, उसको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। उस फिल्म में इन्होंने पहली बार इंडिया में 360 डिग्री कैमरा टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उस टेक्निक में होता यह है कि जो किरदार होते हैं वो होते हैं सेंटर में और आसपास कैमरा उनके चक्कर लगाता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे, और फ्रीज हो जाता है टाइम। इस सीन को शूट करने के लिए शंकर सर ने 60 से भी ज़्यादा कैमरों का इस्तेमाल करा। और अब बात करते हैं उनकी, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे कॉलर्स की, हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की। रितेश जी मलाड़ से हमारे साथ जुड़े हैं, फिरोज जी हैं, रजनीकांत साहब है, क्या बात है, विजेंद्र जी, महेश जी, प्रमोद जी अकोला से हैं। और अब आप सभी के लिए प्ले कर रहा हूँ शंकर सर की दो

0: बैक टू बैक फिल्मों से ये दोनों गाने ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पे, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स।
1: चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है, सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है, फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
1: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
2: क्या मूड आया है कहानी में,
1: या हो दिलकश गीत, आप तो जानते हैं हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
3: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
1: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना जहाँ बजता है हर तरह का संगीत, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर

ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है, सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
4: कलाकार एक ऐसा शख्स है जो अपने जाने के बाद भी जीता है, अपने काम के जरिए, अपनी कला के जरिए और अपनी विरासत के जरिए। और आज हम भारत के एक ऐसे ही महान कलाकार को याद कर रहे हैं, भारत के गौरव को याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक बड़ा मुकाम दिया, बहुत बड़ा मुकाम। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को, क्योंकि आज 17 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है। आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स, और मैं हूँ आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। भाई, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुँचती, सीधे आत्मा में उतर जाती है। और ऐसी एक आवाज़ थी संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की। पंडित जसराज जी को संगीत विरासत में ही मिला था। उनका जन्म मेवाती घराने में एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम स्वयं एक महान संगीतज्ञ थे और उनके बड़े भाई पंडित मणिराम वो भी जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक थे। पंडित जसराज जी को अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई। धीरे धीरे उनकी साधना और गायकी में निखार आता गया। इसके बाद दोनों भाई कई जगह युगलबंदी देना शुरू करे और इनका ये प्रोग्राम बहुत प्रचलित हुआ। इसके बाद पंडित जसराज जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी पहुँचाया। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई थी, लेकिन साथ ही साथ एक मिठास थी और भाव था जो श्रोता को अपने से सीधा जोड़ लेता था। और फिर धीरे धीरे पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े नामों में शामिल हो गए। उनकी आवाज़ आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से लंबे समय तक श्रोताओं तक पहुंची और आज भी पहुंचती है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने कई प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित भी किया। 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और साल 2000 में पद्म विभूषण से पंडित जसराज जी को सम्मानित किया गया। जसराज जी की संगीत यात्रा 8 दशकों से भी ज़्यादा लंबी रही। उन्होंने सिर्फ संगीत गाया नहीं, उन्होंने संगीत सिखाया, शिष्यों को तैयार किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक समृद्ध परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई। आज के दिन 17 अगस्त 2020 को 90

वर्ष की उम्र में पंडित जसराज जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन कलाकार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला नहीं जाती। और हर बार की तरह बहुत सारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं जिनके बिना तो प्रोग्राम कैसे हो पाएगा। मैं नाम लेना चाहूँगा, आकांक्षा जी है अहमदाबाद से, सुबलक्ष्मी जी है, और अब आपके लिए प्ले हो रहा है नीरज श्रीधर की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी तुम मिले से ये गाना। और 10 बजे हम जुड़ेंगे हिंदी में समाचार से, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है समाचार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना की आधारशिला और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बात करें प्रतियोगिता की, महाराष्ट्र सरकार ने लोगों में मृदा और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय रील फॉर साइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रतियोगिता आयोजित की है। 15 से 30 वर्ष की आयु के युवा 15 से 19 अगस्त के बीच सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब सुनिए खेल समाचार। बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वीरता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबाल से होगा। ये थे समाचार। चलिए अब एक बार फिर से जुड़ते हैं FM रेनबो के दूसरे सेगमेंट से।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
3: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
2: क्या मोड़ आया है कहानी में,
3: या हो दिलकश गीत,
4: नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
3: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
5: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
3: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
6: सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा।
1: जी हाँ, वेलकम बैक टू FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। और मैं हूँ आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। और अब वक्त हो गया है हमारे सेकंड आर, और इस आर का नाम है नमस्ते भारत। और इसमें है सेगमेंट है प्रीत जहां की रीत सदा, एक ऐसा आर जहां हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत के अलग अलग रंगों की, अलग अलग संस्कृतियों की, हमारे त्योहारों की, मेलों की और उन खूबसूरत परंपराओं की जो हमारे भारत को इतना खास बनाती है। लेकिन आज इस आर की शुरुआत एक ऐसे रंग से करते हैं जो हम सभी को एक साथ जोड़ता है, वो है तिरंगे का रंग। मुंबईकर्स, इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। और इस अभियान की शुरुआत, जैसा कि हम जानते हैं, 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुई थी। और इसकी शुरुआत की थी

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका उद्देश्य सिर्फ घर पर तिरंगा लहराना नहीं है, बल्कि तिरंगे के साथ साथ हमारे सम्मान, गर्व, देशभक्ति और एकता की भावना को और मजबूत करना है। और इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान देश भर के तहत अपने घरों पर, वर्क प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर लोग तिरंगे के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि सोचिए, हमारी भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, खान पान भी अलग हो सकता है, लेकिन जब तिरंगा हमारे सामने आता है तो ये सारे डिफरेंसेस पीछे छूट जाते हैं। और शायद यही होता है प्रीत जहां की रीत सदा का असली मतलब। अलग अलग रंग लेकिन एक भारत। तो चलिए मुंबई, शुरुआत करते हैं हमारे इस खूबसूरत सफर की है प्रीत जहां की रीत सदा से। ये प्यारा सा गाना आपके लिए, एनर्जी से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ आपके लिए प्ले कर रहा हूं, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
3: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। भाई, भारत में त्योहार सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं होते, ये हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, इमोशंस की खूबसूरत पहचान होते हैं। और हमारे भारत की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, यहाँ प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति भी सम्मान और आस्था का भाव देखने को मिलता है। और आज 17 अगस्त को नागपंचमी भी है, और महाराष्ट्र में श्रावण का पहला सोमवार भी है। आप सभी को श्रावण सोमवार और नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपंचमी एक ऐसा त्यौहार जहाँ नाग देवता की पूजा की जाती है, और भारतीय परंपरा में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना इससे जुड़ी हुई है। नागपंचमी को अपनी अपनी परंपराओं से भारत के अलग अलग हिस्सों में पूजा की जाती है। कहीं पूजा पाठ होते हैं, कहीं लोकगीत, कहीं पारंपरिक रीति रिवाज, तो कहीं इस दिन को, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव की आराधना से जोड़ा जाता है। तो इस बार नागपंचमी का और भी खास होना बहुत ही अच्छा है। आज नागपंचमी है और श्रावण का सोमवार भी है। सभी को एक बार फिर से नागपंचमी की और श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। शंकर जी है डोंबिवली से, कंचन जी है, श्रेय रावत जी है, मिलेश हैं, आर्य रावत जी हैं हमारे साथ, लक्ष्मीकांत मोरे जी हैं गोंडेवली से, और रियासत जी है उत्तराखंड से, विश्वनाथ जी है। बहुत सारे कॉलर्स का प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। और अब आपके लिए पेश कर रहा हूँ सावन के दो स्पेशल गाने। भाई, सावन का सीज़न है, ये गाने तो सुनना बनता ही है। पहला गाना फ्रॉम द मूवी ताल, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
1: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
0: क्या मोड़ आया है कहानी में,
1: या हो दिलकश गीत।
2: बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
1: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
3: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
1: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना, जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर।

0: Diwali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
5: इंटरनेट बैंकिंग,
4: मोबाइल बैंकिंग,
5: व्हाट्सएप बैंकिंग,
4: ईकेवाईसी,
5: एनईएफटी, आरटीजीएस,
4: आईएमपीएस,
5: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
4: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
6: आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स, और मैं हूँ आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। जी हाँ, सावन का मौसम चल रहा है और सावन के इस खूबसूरत से मौसम में हमारे भारत के कुछ इलाकों में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें प्रकृति की हरियाली है, महिलाओं की खुशी है और हमारे लोक संस्कृति के तीनों रंग देखने को मिलते हैं। एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए ये त्यौहार होता है और नाम है इसका हरियाली तीज। दो दिन का ये फेस्टिवल होता है। वैसे तो मुख्य रूप से ये उत्तर भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में और इनके आसपास के एरियाज में, लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाली तीज की रौनक देखने को मिलती है राजस्थान में। और राजस्थान में खासकर तो जयपुर में तीज का त्यौहार अपने आप में एक ग्रैंड कल्चर सेलिब्रेशन माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर विमेंस के लिए स्पेशली ये त्यौहार होता है, तो इस दिन वहाँ विमेंस लहरिया पहनती है, ग्रीन रंग की ड्रेस पहनती है, मेहंदी लगाती है और जगह जगह सावन के झूले लगाए जाते हैं। उस पर सारी विमेंस आती है, झूला झूलती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, गाने गाती हैं। और जयपुर में तो इसका एक बहुत बड़ा शाही मेला निकलता है जिसमें ऊंट, हाथी, घोड़े की शाही सवारी निकलती है, बहुत सारे लोक कलाकार आके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और साथ ही पालकियां, रथ और पारंपरिक लवाजमा, शाही लवाजमा दिखाई देता है। और यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की, जहां डाइवर्सिटी सिर्फ किताबों में नहीं होती, उसे पहना जाता है, गाया जाता है, नाचा जाता है और जिया जाता है। और आज श्रावण का पहला सोमवार भी है महाराष्ट्र में, नागपंचमी भी है। एक बार फिर से सभी को नागपंचमी, श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यूं ही खुश रहे। और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमें सेलिब्रेट करना नहीं सिखाते, दे रिमाइंड अस हु वी आर। और शायद इसी का मतलब है प्रीत जहाँ की रीत सदा का असली मतलब। अब आपके लिए ला रहा हूं फिल्म गुरु से ये वाला गाना, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: अब ने आंखें खोली हैं,
1: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
0: क्या मूड आया है कहानी में,
1: या हो दिलकश गीत,
2: बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
1: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
3: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
1: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना, जहाँ बजता है हर तरह का संगीत, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। भाई, भारत में खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, खेल लोगों को जोड़ता है। खासकर क्रिकेट की बात करें तो ये एक ऐसा खेल है जो भारत के हर कोनों में लोगों को एक साथ जोड़ता है। देखा जाए तो क्रिकेट टेक्निकली हमारा इंडियन स्पोर्ट नहीं है, लेकिन आज भारत की पहचान और दुनिया में भारत के नाम के साथ क्रिकेट का कितना गहरा नाता है, ये हम सब जानते हैं। और आज ये खुशी और भी बड़ी है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेल रही है। जी हाँ, 600 टेस्ट मैच मुंबई 15 अगस्त को, यानी हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन श्रीलंका में गाले में ये हिस्टोरिक टेस्ट शुरू हुआ। और ये क्रिकेट मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट की जर्नी की 94 साल का सेलिब्रेशन है। आप याद करिए, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेला था, और उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बनेगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। एक समय इंडियन टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में अंडरडॉग माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे शानदार बैट्समैन आए, बोलर्स आए, और उन्होंने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है। सुनील गावस्कर, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के उस दौर के खतरनाक फास्ट बोलर्स को बहुत रन मारे, वो भी बिना हेलमेट के, और कपिल देव, जिन्होंने 1983 में पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पर इतने रन बना दिए, इतने ज़्यादा शतक बना दिए कि अभी तक रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन लग रहा है, MS धोनी, जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में 28 साल बाद भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप दिलाया, और आज सभी के चहेते विराट कोहली, द रन मशीन, उनका तो क्या ही कहना। सचिन तेंदुलकर का भी 51 शतकों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा वनडे में, और बहुत ही कमाल की फॉर्म में है। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, द्रविड़, कुंबले, लक्ष्मण, सहवाग, रोहित शर्मा, बुमराह, जहीर, हर खिलाड़ी ने इंडियन क्रिकेट में एक नया चैप्टर जोड़ा। और आज उसी कहानी का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं हमारे यंगेस्ट कैप्टन शुभमन गिल, और अब उनका नाम लेना तो बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनकी वजह से रेडियो है, हमारे प्यारे श्रोता, हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी है, हिलेंद्र जी है, कल्पना राजू जी है उल्लासनगर से, बाबा है दादर से, और इन्हीं के प्यार की वजह से नमस्ते भारत और हमारा रेडियो का प्यार यूं ही बना रहता है। और अब आपके लिए बैक टू बैक गाने मैं प्ले कर रहा हूँ। पहला गाना फ्रॉम द मूवी बेशरम से, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। और मुंबईकर्स, बातों बातों में ये कैसे खूबसूरत सफर निकल गया पता ही नहीं चला। आज हमने नमस्ते भारत में है प्रीत, जहां की रीत सदा में हमने अपने भारत के कई अलग अलग रंगों को महसूस किया। कहीं हर घर तिरंगा के जरिए देशभक्ति का रंग था, कहीं इंडियन क्रिकेट के 600वें ऐतिहासिक टेस्ट की खुशी, कहीं महाराष्ट्र में पहले श्रावण के सोमवार की बधाई और तीज की फुहार, तो कहीं नाग पंचमी के जरिए हमारी आस्था परंपरा और प्रकृति के जुड़ाव की बात हुई। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज कॉमन थी, भारत। एक ऐसा देश जहां कुछ किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन दिल में एक भावना हमेशा वही रहती है, हम भारतीय हैं। कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, फिर भी एक सूत्र में बंधी है भारत की कहानी। इसी के साथ नमस्ते भारत को हम यही कंक्लूड करते हैं और अब सुनिए फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम से ये सुंदर सा गाना।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
2: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
1: क्या मूड आया है कहानी में,
2: या हो दिलकश गीत, आप तो जानते हैं हम हैं आपके

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार. भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा. ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी. मुंबई के कांदीवली स्टेशन रोड पर आज तड़के सुबह एक फल की दुकान और एक बैंकेट हॉल में आग लग गई. दमकल कर्मियों ने सुबह 6 बजे के करीब आग पर काबू पा लिया और 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. मुंबई मेट्रो पर वन व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल पास जारी करने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है. वर्सोवा अंधेरी घाटकों पर मार्ग पर यात्री व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल पास खरीद सकते हैं. यात्री व्हाट्सएप पर हाय भेजकर बुक नाउ और डिजिटल पास विकल्प चुनकर भुगतान कर सकते हैं. अब बात करें मौसम के समाचारों की. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटे के दौरान मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान पालघर, रायगढ़ और थाने में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है. ये थे समाचार. अब से कुछ ही क्षण में आपके लिए प्रस्तुत होगा FM रेनबो कार्यक्रम से ब्रेक फ्री. कृपया प्रतीक्षा करें.
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स.

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Welcome Mumbai, again on FM Rainbow, only on 107.1 FM, musically yours. And this is your radio mitr Saket with you. और अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम ब्रेक फ्री का. ये बिल्कुल ब्रेक फ्री होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे और आपको साथ में अच्छे अच्छे गाने भी तो सुनाएंगे, जैसे कि ये गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में और उदय मजूमदार की आवाज़ में. बहुत ही प्यारा गाना है, सावन का गाना है, क्योंकि सावन चल रहा है और ये वाला गाना नहीं सुना, ये तो कोई बात नहीं होती. सुनते रहिए 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स.

0: जाकर दिल में बस जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।
1: नमस्कार, वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। जी हाँ, अगेन आई एम अ रेडियो मित्र साकेत विथ यू। और आज ब्रेक फ्री में हम बात करेंगे उस चीज की जिससे हमें ब्रेक फ्री होना सही में बहुत जरूरी है। ये चीज हमारी लाइफ से ब्रेक फ्री हो जाए तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपनी जिंदगी को जीने से ज्यादा कभी कभी दूसरों की जिंदगी को देखने लगते हैं, है ना? सही कहा ना? और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत। आज हम इसी एक आदत की बात करेंगे ब्रेक फ्री में, जो शायद हमें लोगों से बहुत एक डिफरेंट तरीका सोचने को मजबूर कर देती है। वो चीज़ है कंपैरिजन। बचपन से ही हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन देखना पड़ता है कि देखो वो बच्चा कितने अच्छे मार्क्स

लाया है। देखो उसका बेटा तो ये कर रहा है, उसकी बेटी तो इतनी सक्सेसफुल है। और धीरे धीरे हम भी सीख जाते हैं कि अपनी खुशी दूसरों के अचीवमेंट में मेज़र करना। हम सोचते कि अरे वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ब्रेक फ्री में कंपैरिजन टॉपिक पे। कंपैरिजन हमारी लाइफ से दूर जाना चाहिए, कंपैरिजन में कभी रहना ही नहीं चाहिए, इससे ब्रेक फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में सुनेंगे मज़ेदार से गाने, जैसे कि ये फिल्म स्पेशल 26 से गाना आपके लिए आ रहा है फ्रॉम द मूवी स्पेशल 26।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है।

0: सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेलकम बैक मुंबई ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स. और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेक फ्री में कंपैरिजन की. ब्रेक फ्री, कंपैरिजन से ब्रेक फ्री होना बहुत ज़रूरी है. एक लाइन मैंने सुनी है और देखी भी है, जो दिखता है ना ज़रूरी नहीं कि वो सच हो. और आज ब्रेक फ्री में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की. अब बात करें सोशल मीडिया की, हम हमारा सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं, अरे किसी की तो परफेक्ट बॉडी है, ये तो बहुत अच्छी बॉडी बना रहा है, ये तो अपनी परफेक्ट रिलेशनशिप में है, ड्रीम वैकेशन पर जा रहा है, ये बंदा तो सक्सेसफुल है. और ये सब देख के हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं. लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाते. जी हाँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं. किसी की हाईलाइट रील देखकर अपनी लाइफ को बिल्कुल जज मत करिए. क्या पता सच्चाई कुछ और हो. सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन लीजिए, कंपैरिजन मत करिए. क्योंकि आपकी रियलिटी भी बहुत खूबसूरत है, बस वो फिल्टर में नहीं है, आपकी असली ज़िंदगी में है. तो सोशल मीडिया से जो कंपैरिजन होता है कि ये तो वहाँ जा रहा है, ये उधर जा रहा है, इसकी इतनी अच्छी बॉडी है, मे बी उसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है. बने रहिए हमारे साथ. और अब कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना आपके लिए आ रहा है फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल से.

जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
2: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
1: क्या मोड़ आया है कहानी में,
2: या हो दिलकश गीत।
3: बावरा मन राता के उतर से रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
2: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
4: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
2: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना, जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। Because we are musically yours.

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

0: और क्या कर रहे हो आजकल?
1: समझ नहीं पाया ना? ये वर्ड, ये लाइन हम सभी ने कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में किधर कहीं फंक्शन में सुनी ही सुनी है। ख़ासकर हमारे जैसे यंगस्टर्स, उनको तो भाई आए दिन ये लाइन सुनने को ही मिलती है अपने रिश्तेदारों से। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम एंड शो ऑन है ब्रेक फ्री। और ब्रेक फ्री में आज हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। भाई कंपैरिजन से ब्रेक फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में जाते हैं, कोई रिश्तेदार हमें मिलता है, दूर का रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार, अच्छे से बात करते हैं, हाँ नमस्ते बेटा, कैसे हो, सब बढ़िया, और घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, एक मिनट में वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है आजकल। फिर हम बताते हैं कि हाँ चाची, दीदी, मौसी, भाभी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने इस करियर में मैं काम कर रहा हूँ। फिर पूछते हैं कि कमा लेते कितना हो, कितना कमा लेते हो। और जब हम गलती से हमारी कमाई बता देते हैं तो फिर वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार की, अपने किसी करीब रिश्तेदार से हमारा कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं इनडायरेक्टली। अच्छा ठीक है, हमारा बेटा तो इतने कमा रहा है, उसका पैकेज तो इतना है, ठीक है काम करो ना, उससे मिल लेना, वो तुम्हें यहाँ नौकरी दिला देगा, वो तुम्हारा पैकेज इंक्रीज करा देता। और ये सब बातें जब हमारे दिमाग में आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन वाली स्टेट में हम आ जाते हैं, और इससे ब्रेक फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके किसी रिश्तेदार की चेकलिस्ट नहीं है। ये वर्ड है ना, वो लाइन है, कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे। अरे ठीक है भाई, लोग कहेंगे, ये क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर किसी का करियर अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, और हर किसी का सही समय भी अलग है। तो किसी और की प्रोग्रेस देखकर, रिश्तेदारों से किसी और की प्रोग्रेस सुनकर अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आपको अपने से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में डेली आगे बढ़ रहा हूँ? जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, उसमें क्या मैं डेली कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूँ? और अगर जेन्युइनली जवाब है हाँ, तो बस यही काफ़ी है। तो रिश्तेदारों के कंपैरिजन से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब आपके लिए आ रहा है अरिजीत की आवाज में ये गाना। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
2: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
1: क्या मूड आया है कहानी में,
2: या हो दिलकश गीत,
3: बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
2: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत,
4: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
2: 107.1 FM, रेनबो।
0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना,
5: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
5: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना, कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन,
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं FM Rainbow, only on 107.1 FM, musically yours, and show on है Break Free. कभी-कभी हम जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने के पीछे भागते हैं और यही भूल जाते हैं कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है. क्या हम खुश हैं? क्या हम जो काम कर रहे हैं, क्या सही में अपन उसमें खुश हैं? वेलकम टू FM Rainbow, दिस इज योर रेडियो मित्र साकेत विथ यू. और आज हमने ब्रेक फ्री में बात करी कंपैरिजन की, सोशल मीडिया से कंपैरिजन, रिश्तेदारों के सवालों से कंपैरिजन, और उसी प्रेशर से हम बार बार खुद को अपने आप को उसमें डाल देते हैं. लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप खुश हैं या नहीं. ठीक है, रिश्तेदार तो कंपैरिजन करेंगे, हर चीज़ के परफेक्ट होने का आप इंतज़ार मत करिए, खुश रहना सीखिए. क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कैसा आएगा, है ना? हमेशा सक्सेसफुल होने की कामना करिए. ठीक है, मेहनत करिए, अपने काम को जम के जान लगा के करिए और सक्सेस होगी. अगर किसी काम को आप ईमानदारी से करेंगे, जी जान लगा के करेंगे, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप उसमें सफलता पाएंगे ही पाएंगे. ठीक है, सबका वक्त अलग अलग हो सकता है, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को थोड़ा लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है ना तो बहुत अच्छे से मिलती है. इसलिए दूसरों से खुद को कभी कंपैरिजन मत करिए. सबसे ज़रूरी है कि आप क्या खुश हैं. एंड पता है, सक्सेस की देखा जाए तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है. कोई थोड़ा बहुत कमा के भी खुश है, अगर उसको उससे खुशी मिल रही है, वो अपने फैमिली के साथ खुश रह रहा है, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम इन थिंग, बहुत सही है. अगर वो खुश है तो क्या दिक्कत है. और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ों अरबों कमा कर भी खुश नहीं है. इसलिए सबसे ज़रूरी है खुश रहना. और अब आपके लिए आ रहा है शफ़ाक़त अमानत अली की आवाज़ में फिल्म कभी अलविदा ना कहना से ये गाना. और इस गाने के बाद हम जुड़ेंगे समाचारों से, और उसके बाद होगा म्यूज़िक कैफ़े, वो भी बहुत कमाल होगा. सुनते रहिए FM Rainbow, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूज़िकली योर्स.

से कोई आकर दिल में बस जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमति लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजना को मंजूरी के लिए अनुशासित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रक्रिया में जारी है। अब बात करें रूस हमले की। रूस के हमले में यूक्रेन के अर्सल मित्तल इंस्पात से

0: यंत्र को निशाना बनाए जाने के बाद दो लोगों की मौत हो गई और 13 कर्मचारी ठेकेदार घायल हो गए। इस हमले से भारतीय वंश के अरबपति उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के स्वामित्व वाले यूक्रेन के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र का संलक्षण संचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिलाओं श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला सदर अस्पताल में किया जा रहा है। नागपंचमी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। मुंबई के शिव मंदिरों में आज दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। घर घर मिट्टी की नाग प्रतिमा की पूजा अर्चना की जा रही है। गांव देहातों में नाग के बिलों पर दूध चढ़ाकर और अलग अलग खेल दिखाते हुए खेल खेलते हुए युवतियां नागपंचमी का त्यौहार मना रही है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों माननीय उप मुख्यमंत्रियों ने नागपंचमी के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दी है। ये थे अभी तक के समाचार। अब से कुछ ही क्षण में हम जुड़ेंगे म्यूजिक कैफे से। बने रहिए FM रेनबो के संग।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।
0: वेलकम बैक टू FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स। और अब स्टार्ट हो गया है हमारा सेकंड आर और इस आर का नाम है म्यूजिक कैफे। और म्यूजिक कैफे में क्या होगा, मैं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके लिए आज बहुत सारी कहानियां लेकर आया हूं। कुछ कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, हम फिल्में देखने जाते हैं, गाना सुनते हैं अपना पसंदीदा, लेकिन क्या हमें उस गाने के पीछे की कहानी मालूम है? तो कुछ कहानियाँ आज मैं आपको बताऊंगा, फिल्मों के पीछे की कहानियाँ, गाने को बनाने के पीछे क्या ट्रिविया था, वो गाना कैसे ख़ास है, और कोई फिल्म है जिसको हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत टाइम से हमें वो फिल्म बड़ी पसंद है, लेकिन बहुत वक्त बाद हमें मालूम चलता है अरे ये तो उस फिल्म की रीमेक थी। तो आज म्यूज़िक कैफ़े बहुत अच्छा बॉलीवुड सागा होने वाला है। बहुत बॉलीवुड की कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा और साथ में गाने भी तो सुनाऊंगा, जैसे कि ये किशोर दा और लता जी की आवाज़ में फिल्म आग गले लग जा से ये वाला गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। पंकज मुहुड़े जी हैं, राजेंद्र परमार जी हैं, बाबा है दादर से, राकेश माथुर जी हैं, दीपा जी है, कमलाकर शेलके जी है वर्ली से, बहुत सारे श्रोता हमसे प्यार करते हैं। हम सभी से श्रोताओं का प्यार और हमारे से श्रोता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं के मैसेज पढ़कर और बहुत खुशी सी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा म्यूजिक कैफे किशोरदा और लता जी की आवाज़ में।

0: 8444 पर कॉल करें। BSNL, हर परिवार का भरोसा।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: वेलकम बैक टू FM रेनबो, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स, एंड दिस इज योर रेडियो मित्र साकेत विद यू, एंड शो ऑन है म्यूजिक कैफे। अभी कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले हमने आपकी कसम फिल्म स्टारिंग राजेश खन्ना, इस फिल्म से हमने गाना सुना जय जय शिव शंकर, और सावन का महीना चल रहा है, आज नाग पंचमी है, ये गाना तो सुनना बनता ही है ना। और इस गाने को गाया था हमारे किशोर दा और कंपोज किया था RD बर्मन साहब, पंचम दाने। और इस गाने को प्ले करने का एक और ख़ास रीज़न है, इस गाने के पीछे एक कहानी है। गाने के एंड में आपने एक लाइन सुनी होगी, अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्चा करवा दिया है ना। इस लाइन के पीछे एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब पंचम दा इस फिल्म का म्यूज़िक तैयार कर रहे थे, लगभग सारा म्यूज़िक तैयार हो गया था, बस ये एक गाना बनना बाकी था, तो प्रोड्यूसर साहब से पंचम दा ने 50,000 रुपये की डिमांड करी कि आप मुझे 50,000 रुपये दीजिए, मैं गाना तैयार कर दूंगा। प्रोड्यूसर साहब ने शायद थोड़ा ना नकुर करा, अरे नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा ये वो, लेकिन इन द एंड मान गए और 50,000 रुपये दे दिए। और गाने की जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तो किशोर दा आने में थोड़ा सा लेट हो गए, और प्रोड्यूसर साहब को क्या सूझी, प्रोड्यूसर साहब बार बार पंचम दा को 50,000 रुपये का ताना मार रहे थे, टोंट मार रहे थे कि अरे किशोर दा अभी तक नहीं आए, क्या बात है पंचम दा, मेरे 50,000 रुपये खर्च करवा दिए, 50,000 मैंने खर्च कर दिए। और जब किशोर दा आए, और किशोर दा तो किशोर दा थे, उनकी आदतें तो सभी को मालूम थी, बड़ा मस्ती मजाक करते थे, झूमते हुए आते थे, खुश होकर आते थे, और गाने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे किशोर दा, अपनी मस्ती में मस्त थे। फिर वो प्रोड्यूसर साहब शुरू हो गए कि पंचम दा 50,000 रुपये खर्च हो गए, जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। और फिर किशोर दा के कानों में ये बात आई, किशोर दा को किसी ने बताया कि प्रोड्यूसर साहब बार बार पंचम दा को 50,000 रुपये का टोंट मार रहे हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब भाई किशोर दा तो किशोर दा, किशोर दा जितने बड़े सिंगर थे उतने ही बड़े प्रैंकस्टर भी थे, सबसे मजाक करते थे। तो किशोर दा को ये शरारत सूझी जब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे, इन द एंड बोल दिया अरे भाई बजाओ बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, प्रोड्यूसर साहब ने 50,000 रुपये खर्च करवा दिए। तो ये थी इस गाने के पीछे की कहानी, और अब आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म, फिल्म का नाम है लव स्टोरी 1940, उस फिल्म का म्यूजिक भी RD बर्मन दा, पंचम दा ने कंपोज किया था, और इस गाने के पीछे भी एक कहानी है, बताऊंगा लेकिन गाने के बाद।

अभी आपने सुना 1942 लव स्टोरी से ये प्यारा सा पंचम दा का कंपोज किया हुआ गाना और कुमार सानू की आवाज़ में। इस गाने की पीछे की कहानी ये है, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। जब पंचम दा इस गाने को बना रहे थे, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विदु विनोद चोपड़ा ने, और बहुत से प्रोड्यूसर इस फिल्म के लिए पंचम दा को एज अ म्यूजिक देना नहीं चाहते थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन विदु विनोद चोपड़ा ने चुना पंचम दा को। और पंचम दा के पास थी इस फिल्म का म्यूजिक बनाने की जिम्मेदारी। और जब इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, यानी जब इस गाने की हियरिंग का दिन था, जब इस गाने को सुनने के लिए विदु विनोद चोपड़ा पंचम दा के पास गए, तो वो स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो में पूरा सब सारा म्यूजिक सिस्टम रेडी था, तबला, ढोल, हारमोनियम, सारे म्यूजिशियन बैठे थे। तो जैसे ही पंचम दा ने इस गाने को गाना स्टार्ट करा, तो ये गाना यूं था, कुछ ना कहो, कुछ भी ना सुनो, क्या कहना है, क्या सुनना है, दाम दाम दाम, लाइक अ पॉप म्यूजिक। जैसे ही गाना खत्म हुआ, पंचम दा ने विदु विनोद चोपड़ा साहब से पूछा कि कैसा लगा गाना। वो थोड़ा चुप रहे। वो बोले कि दादा, मैं आपको सोच के बताता हूँ। लेकिन उन्होंने

तुरंत बोला, आई एम सॉरी दादा, ये बकवास है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंचम दा ने बोला कि तू मैं म्यूजिक कर रहा हूं या नहीं। विधु विनोद चोपड़ा ने बोला कि दादा असल में मुझे आपके फादर चाहिए। यानी जहां पंचम दा बैठे थे ठीक ऊपर उनके पिता ग्रेट म्यूजिशियन एस डी बर्मन साहब की तस्वीर लगी हुई थी। विधु विनोद चोपड़ा साहब ने कहा उन्हें कि असल में मुझे वो चाहिए और आप ही उनके सबसे ज्यादा करीब हैं, तो जो म्यूजिक मुझे चाहिए वो केवल आपके पास मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एक हफ्ता दो, मैं इसको ठीक करता हूं फिर बताता हूं। विधु विनोद चोपड़ा साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साल ले लीजिए, लेकिन गिव मी द म्यूजिक। और जब अगले हफ्ते विनोद चोपड़ा साहब फिर रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, फिर सुनने के लिए पहुंचे उस गाने को, जैसे ही पंचम दा ने पहला गाने का बोल बोला रोंगीला रोंगीला, विधु विनोद चोपड़ा साहब ने अपने आप रिस्पेक्ट में हाथ उठा दिया। पंचम दा ने गाना रोक दिया, बोले क्या हुआ? विधु विनोद चोपड़ा साहब ने कहा कि दादा पहला नोट ही इतना शानदार है तो गाना कहाँ जाएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, लव स्टोरी 1942 का म्यूजिक सुपर हिट रहा। और अब आपके लिए आ रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना। और इसके बाद हम जुड़ेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग से।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी के टूजी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
3: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
3: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
3: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
4: बेटा सोमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
5: जी दादाजी।
6: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
7: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा

0: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
1: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।

0: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
1: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
2: सोमेश, सोमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
0: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
2: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
0: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
2: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
0: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
2: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
0: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
2: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
2: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
3: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
4: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
4: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
2: जी।
4: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
2: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
0: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
2: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
4: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
0: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
4: कैसी तबीयत है बेटा?
0: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
4: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो, दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, उठो। हाँ चलो चलो।

0: शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
1: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
2: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती। पर ऐसी सजा, उफ।
3: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
0: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
2: जी दादाजी।
4: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
0: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
4: बेटा।
2: जी।
1: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
3: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब,
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब।
8: जी सर।
7: साहब।
5: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
9: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर

0: विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हूल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
0: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी, ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
3: नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो।
2: चलो हटो,
3: साहब
2: साहब
3: साहब।
2: ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो साहब।
2: चल सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब,
2: इसको हंटर मारो।
3: साहब।
4: जी सर।
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।

0: सिद्धू और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
1: भाई कान्हू।
2: जी भैया।
1: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
2: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
1: क्या हुआ?
2: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
1: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
2: हाँ भैया।
1: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
2: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
1: तो फिर
2: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
1: हाँ ठीक कहा तुमने।
2: हाँ
1: ऐसा ही करेंगे।
2: जी भैया।
0: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिद्धू कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
0: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
3: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिद्धू कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिद्धू ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
6: सही बोले, सही कहे।
5: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
7: हाँ सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
6: सिद्धू भैया सही बात
4: कह रहे हैं। सही कह रहा है।
5: बाजार में हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
4: बताओ भैया, हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
5: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
8: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: अब करो या मर जाओ।
8: अब करो या मर जाओ।
5: अबुआ राज अबुआ किसुम।
8: अबुआ राज अबुआ किसुम।
5: अबुआ राज।
0: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
3: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत

0: लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया।
1: पकड़ो इनको, पकड़ो हमारा सिपाही को मारा इसे।
0: भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कानू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
0: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कानू का शौर्य गाया जाता है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट आर हिट एंड हॉट। जी हाँ, सभी को मालूम है ये आर है केवल आपका और इस आर में प्ले होंगे वही गाने जो आपका दिल चाहे। तो अपना मनपसंद गाना सुनने के लिए, जो गाना आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, जो गाना आपके दिल में और मन में दोनों में प्ले होता रहता है, वो हमें बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे नंबर 8657661071। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर तो वैसे आप सभी को याद है, 8657661071, हिंदी में 8657661071। पहला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म कहो ना प्यार है से, और इस गाने के बाद प्ले होंगी केवल आपकी फरमाइश। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स।

0: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
1: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
0: क्या मोड आया है कहानी में,
1: या हो दिलकश गीत।
2: बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
1: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
3: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
1: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना, जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
4: सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स, एंड शो ऑन है हिट एंड हॉट। और हिट एंड हॉट में आज की पहली रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रहा हूँ दिलीप जी की। इन्होंने रिक्वेस्ट कराया बहुत ही प्यारा गाना, प्यार से भरा हुआ गाना, और गाने के बोल हैं

आई एम इन लव फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. आवाज आप सुनेंगे के एंड डोमिनी की. इसके बाद हम प्ले करेंगे विजेंद्र जी की रिक्वेस्ट. अकोला महाराष्ट्र से है इनके रिक्वेस्ट और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है नागपंचमी के शुभ अवसर पर लता जी की आवाज में नगीना फिल्म से श्रीदेवी जी का ऑल टाइम सुपर हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा. मतलब हम दुश्मन नहीं है, गाने का नाम है ये. ओके, यू से इट, वी प्ले इट. एंजॉय करिए गाने को.

नगीना का ऑल टाइम सुपरहिट ये गाना, और बहुत से लोगों ने इस गाने की रिक्वेस्ट की। विजेंद्र जी ने और पंकज जी ने भी अमरावती से इस गाने की रिक्वेस्ट करी, एंड सभी की फरमाइश पे ये गाना यू सेट वी प्लेट।

ऋषि कपूर साहब और श्रीदेवी जी की सुपर हिट फिल्म नगीना से ये गाना, बहुत कॉलर्स ने, बहुत ही लिसनर से हमसे ये गाना रिक्वेस्ट करा, विजय जी ने, पंकज जी ने और ने हमसे ये गाना रिक्वेस्ट करा, बहुत अच्छा लगा सबकी फरमाइश ये प्ले करके। और आज नागपंचमी भी है, गाना तो प्ले करना बनता है। एक बार फिर से सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं शुभ लक्ष्मी जी की, अंधेरी ईस्ट से है इनकी रिक्वेस्ट, और इन्होंने भी हमसे बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना रिक्वेस्ट किया है, फिल्म जख्म से, गली में आज चांद निकला। और इसके बाद हम जुड़ेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार से, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आपकी फरमाइशों का दौर। यू सेट वी प्लेट, सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक टू एफ एम रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स और मैं हूं आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ एंड शो ऑन है आपका शो ऑन है फेवरेट आपका आर हिट एंड हॉट और शो हिट जा रहा है बॉस. चलिए आते हैं फटाफट रिक्वेस्ट पे. अगली रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं काजल जी की. चेंबूर से है इनकी रिक्वेस्ट और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है अरिजीत की आवाज़ में ओ सजनी रे. इसके बाद फिर आप सुनेंगे अरिजीत की आवाज़. अरिजीत का ओमा ही फ्रॉम डंकी रिक्वेस्ट किया है हमसे राकेश माथुर जी ने पुणे से. दूर दूर से रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है. वैसे पुणे तो पास ही है. चलिए सुनिए फरमाइश. यू से इट वी प्ले इट.

कैसे कोई आकर दिल में बस जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपने आंखें खोली हैं,
1: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
0: क्या मूड आया है कहानी में,
1: या हो दिलकश
2: गीत।
1: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
3: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
1: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना, जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। Because we are musically yours.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बाळा, मी काल माझ्या पुतण्याच्या घरी जाऊन आलो. मी तर पाहून थक्कच झालो. ते लोक दिवसभर एसी चालवतात, रोज वॉशिंग मशीन लावतात, घरात दोन दोन फ्रीज आहेत, पण त्यांचं वीज बिल किती येतं माहितीये? शून्य. मी विचारलं तर पुतण्या म्हणाला, काका सगळी वर्षाची कृपा आहे. म्हणजे सोलर पॅनलची. मी विचार केला, आता बसवायलाच पाहिजे.
2: पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना. सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: मनोरंजन पूरे परिवार का, कनेक्टिविटी पूरे भारत की. BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में. 200 Mbps, 25 OTT, 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग. सीमित अवधि का ऑफर. अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-4444 पर कॉल करें. BSNL, हर परिवार का भरोसा.
5: आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM. नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं फिरोज सिंगानपुरिया जी की. इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है OMG2 फिल्म से ऊंची ऊंची वादियों में बसते हैं भोले शंकर. और जी हाँ, हम सभी जानते हैं ये गाना महादेव का है और श्रावण चल रहा है और आज महाराष्ट्र में श्रावण का पहला सोमवार भी है. भोलेनाथ जिनकी नाम से हर मुश्किल हल हो जाती है. तो चलिए सुनते हैं ये गाना

आज बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भेजी, ये हार था आप सभी का हिट एंड हॉट। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट प्ले हो पाई और बहुत से श्रोताओं की रिक्वेस्ट नहीं हो पाई, तो उसके लिए दिल से सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन आपकी फरमाइश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी मिलेंगे। और इसी के साथ अपने रेडियो मित्र साकेत को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और आखिरी रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रहा हूँ ज्योति जी की, ज्योति अकोला जी की, घटोल से है इनकी रिक्वेस्ट। तो अगली फरमाइश इनकी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यू से इट वी प्ले इट। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है अब थामा फिल्म से ये गाना, एंजॉय करिए।

चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मराठी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं माफ करिएगा, आपसे थोड़े क्षण में आप सुनेंगे हिंदी में मिड डे न्यूज़ और 2:15 में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: Game 21-16. Talking to media after the match, the Indian duo said the support and cheers from the home crowd helped boost their confidence. They also noted that winning the early points in the first game helped them gain control of the match. Later in the day, former world champion and 9th seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland in the women's singles. Meanwhile, the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Sethi will face world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 183 for 5 in their first innings against India on day 3 of the opening test of the series at the Galle International Stadium when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Vikasit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham Temple in Bihar. 5 people killed in a fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 184 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun Hariharan Amsakarunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30वें दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसकरुन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
3: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन

0: संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30

बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पर अबाल काली धरती दिस आलाय माथ्या वरती अल्याड ड्वांगर पल्याड ड्वांगर मदीत खाल खाल दरी दरा दपन तलग पोरी

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 5:03 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना। एंड अब तक तो आपको पता है चल ही गया होगा, ये वक्त है लव यू जिंदगी प्रोग्राम का। और लव यू जिंदगी में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाली, बस इतना कहूंगी दैट लव जिंदगी, ये दो चीजें। वेल, बाकी बातें ये अगला गाना करेगा, निकिता गांधी और मोहित चौहान की आवाज में।

5:11 ऑन द क्लॉक, आप सबकी अटेंडेंस देखिए लग चुकी है. बिकॉज अगर आपको नहीं पता अटेंडेंस कैसे लगानी है, मैं आपको बताती हूँ. आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है 8657661071 पर. यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां पर आपकी हाजिरी लगती है. जी दैट्स राइट, आई नो कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं हर कोने से इंडिया के, एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप कहां से हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि मैं भी तो पहचानूं और जानूं कि हमें सुनने वाले कहां से आते हैं. ये जो रिश्ता है ना, ये और गहरा करना चाहते हैं. वेल विद दैट आपको बता दूं, मुंबई में इस वक्त 5:12, इस वक्त तो आई एम श्योर कि लोकल ट्रेनें भरी हुई होंगी और हम सब थक कर घर लौट रहे होंगे. लेकिन कमाल है ना, हमारी जिंदगी एक एक्सेल शीट जैसे बन गई है. हर चीज का एक ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें. वॉक पर जाएं तो कैलोरी बर्न होनी चाहिए, किताबें पढ़ें तो करियर सोचते हुए पढ़ते हैं, या फिर उससे हमें कुछ ना कुछ तो हासिल जरूर होना चाहिए. कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जहां पर आपको सिर्फ मजे आए? कोई कॉमिक बुक बचपन में जो आपने शायद कहानियां सुनी होंगी, या कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों की किताबें जो स्कूल में शायद हमें लगता हो यार क्यों पढ़ाई करनी है, पर अगर आप वही पन्नों को फिर से पलटें तो आपको शायद अंदाजा हो कि कितनी सिंपल लाइफ थी. पर हम हमेशा अपनी लाइफ को

0: एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ाने की सोचते हैं। सो आज एक टारगेट आपको दे रही हूं कि कोई टारगेट मत रखिए, स्पेशली आपकी खुशियों को, क्योंकि आज बात करेंगे किसी मतलब की खुशी के बारे में बिल्कुल भी नहीं, हॉबीज के बारे में जो कोई पैसे या प्रमोशन नहीं देती पर आपको सुकून देगी। जो भी करो इसलिए मत करो कि शायद आपको कोई रिटर्न में चीज मिले, इसलिए करो क्योंकि आपको बस करना है। आपको कुछ हासिल हो ना हो पर आपको सुकून जरूर मिले। वेल विद दैट शाहिद मालिया की एक और प्यारी आवाज में गीत आपको सुना रही हूँ, खोया खोया फ्रॉम द मूवी शेफ।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।

5:24 on the clock, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 with me RJ Bhavna, जहां Love You जिंदगी प्रोग्राम चल रही है. और यहां पर Love You जिंदगी में हम बात कर रहे हैं बेमतलब की. हाँ, हर बार कोई बात करने की वजह होना जरूरी थोड़ी है. कभी चलते चलते किसी को हाय कह दीजिए, चलते चलते कभी हालचाल पूछ लीजिए. हर चीज का मतलब क्यों ढूंढना है हमें. वैसे बेमतलब की ही बातें करते करते एक बार ऐसी ही मैं कहानी की ओर मेरा रुख गया. कहानी कुछ ऐसी थी कि ये पढ़ी है मैंने, वैसे कहानी कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है, जहां पर वो बच्चा बचपन में घंटों मिट्टी के खिलौने बनाता और खुश हो जाता. पर जब बड़ा हुआ तो कॉर्पोरेट जॉब, डेडलाइन, स्ट्रेस, बस इन्हीं चीज़ों में डूब कर रह गया. एक दिन परेशान होकर उसने चुपचाप एक संडे थोड़ी सी क्ले खरीदी और बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन के एक छोटा सा मिट्टी का घर बना दिया. कोई फोटो नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया. पर उस एक घंटे में उसका सारा स्ट्रेस गायब हो गया, क्योंकि उसने वो मिट्टी से घर नहीं बनाया था. उसने शायद अपने बचपन का वो सुकून वापस पा लिया था, जो शायद ऑफिस की फाइलों में कहीं दबकर रह गया था. कमाल है ना, बचपन की बेफिक्र गलियों की याद और एक मुस्कान चेहरे पर. कैसे हम बेफिक्र घूमा करते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं. वक्त आपको तब याद आता जब आपके घर से आवाज आती कि खाना खा लो, कितना खेलोगे. अब शायद ये आवाजें सुनने को कान तरस जाते हैं. हाय, वो दिन भी क्या दिन थे.

वेल, इस कुल्फी को ना एक बार पिघलने दो। हर बार हर चीज परफेक्ट जब हम करने जाते हैं तो शायद हम उस चीज का मजा भूल जाते हैं। क्यों हमने उस टपकती हुई कुल्फी को साफ करना सीख लिया? क्यों हमने उस स्वाद को पहचानना छोड़ दिया? अब हम कितनी महंगी है कुल्फी, कितनी अच्छी है कुल्फी, ये क्यों देखते हैं? क्यों हम कुल्फी का असली मज़ा भूल चुके हैं? एक बार बस ऐसे ही किसी दुकान से कुल्फी खरीदिए और बस बच्चों की तरह उस कुल्फी को खाकर देखिए। बेमतलब ही सही, ज़रूरी है कि कोई वजह हो। चलिए, आज के लिए आपका होमवर्क तय हुआ और उसके बाद मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और छोड़िए, कुल्फी ना सही, आपकी मन पसंदा चीज़ जो आपने शायद बचपन में बड़े चाव से खाई हो, लेकिन अब शायद आपको आपके आसपास के लोग, आपकी उम्र, आपके टेस्ट, आपकी जेब, हर चीज़ की वजह से आपने उस पर रोक लगाई हो, तो आज के लिए आपको फ्री पास। और ये एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
4: 5:47 ऑन द क्लॉक, आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं ना। श्योर, आप लोगों से मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे बात करना चाहती हूं। आपकी बातें सुन भी रही हूं और आपकी बातें, आप जो मुझसे बात कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आई कैन नॉट मिस वन थिंग। आपको पता है खाने का और गाने का मुझे कितना शौक है, करेक्ट? तो वैसे ही वैद्य जी कह रही हैं कि चलें कुल्फी खाने को, वुड लव टू शेयर विद समवन यू लव। वेल, आप जिनके साथ खाना चाहते हैं या फिर अकेले भी खाना चाहते हैं कुल्फी, प्लीज़ गो एंड डू इट। और अगर आपको इनवाइट भी भेजनी है ना तो आप मुझे बताइए, खाने के लिए मैं कहीं भी चले जाती हूँ। वैसे इसी बात पर चलिए आज की एक और बात आपको बताती हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इट इज़ अबाउट हसल कल्चर बर्न आउट। अब ये होता क्या है, हम हर एक्टिविटी को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग ना ओवरलोड हो जाता है। जैसे आप हर एक चीज़ एक साथ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पास तो दो ही हाथ हैं। आपके दिमाग को लगता है कि आपके पास मल्टीपल हैंड्स आर देयर, मतलब बहुत सारे आपके पास हाथ हैं और आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। वेल, सोचना अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो आप जब खुद को ही अपने आप से इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं, जो शायद आपको भी पता हो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो आपके दिमाग में थकावट होने लगती है। और जब कब ऐसा हो ना, तब थोड़ा ब्रेक ले लेना कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर पेंटिंग बेचने के लिए ही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं कि हर गाना आपको सीख कर स्टेज पर ही गाना हो। कभी कभी बेसुरा भी गा लो यार, बिना किसी पर्पस के डायरी के पन्ने काले कर दो। इसे आजकल लोग डूडलिंग भी कहते हैं। वैसे

बस यूं ही सोचते सोचते बिना बात के अलग दुनिया में चले जाना। डेलिल्यू इज द न्यू सोलिल्यू, आजकल बहुत सारे टर्म्स निकले हैं। वैसे आपको इसकी भी अगर क्लास चाहिए तो चलिए अगले शो में हम ये भी बात कर लेंगे। बट ये चीज़ तो है कि इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके एंड इट इज़ ओके टू बी अनप्रोडक्टिव समटाइम्स। इनफैक्ट कहना भी है, इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी, जो होना है वो होकर रहेगा। तो उसके बारे में सोचकर स्ट्रेस क्यों लेना, इस पल जी लीजिए। और अगर आपका दिमाग भारी है तो दिल हल्का कर लीजिए, दिल भारी है तो दिमाग हल्का कर लीजिए। बर्न आउट लेकिन मत हो जाइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, रुक कर गहरी सांस लेने का नाम है। क्यों?

5:57 ऑन द क्लॉक, ठीक 6 बजे आप सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे अंदाजे में यहाँ प्रोग्राम। 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी मैं। एंटिल देन, तलत महमूद की आवाज में आपको सुना रही हूँ ये अगला गाना।

6:01 ऑन द क्लॉक, 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार एंड उस पार अंदाजे बयां। तो चलिए लता मंगेशकर की आवाज में आपको अगला गाना सुना रही हूँ, दिल एक मंदिर मूवी से।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 6:15 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स विथ मी आरजे भावना। और ये वक्त है हमारे प्रोग्राम अंदाजे बयां का। और आज की शाम शब्दों के नाम नहीं बल्कि रूह के नाम है। चलिए इस मखमली शाम की शुरुआत करते हैं सूफियाना कलाम के उस नूर के साथ जो भटकते हुए मन को भी एक जगह ठहरा देता है। अमीर खुसरो के लिखे हुए गीत जो अबीदा परवीन की आवाज़ में आप सुनेंगे, ऑफ कोर्स वो गाना जो बिना किसी सूफी या कव्वालियों की महफिल में बिना गाए वो पूरा ही नहीं हो सकता, छाप तिलक।

खुसरो निजाम के बलबल जाए। अब ये जो गाने में आपने शब्द सुना वो इसलिए था क्योंकि ये गाना जो है खुद हजरत अमीर खुसरो जी ने लिखा, उनके मुर्शिद यानी उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए। और इस गाने में हर एक लाइन आपको शायद अब तक लग रहा हो कि ये एक प्यार का गाना है, प्यार के लिए, अपने इश्क के लिए गाना है। इश्क तो है जरूर, लेकिन ये इश्क समाज में जिस तरह हम इश्क को देखते हैं वैसा नहीं है। ये इश्क वो दीवानगी है जो अपने गुरु के लिए खुसरो साहब के पास थी। छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिलाए के, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो छाप है दुनियादारी की छाप, आपके शानो शौकत, तिलक आपके घमंड का, गुरूर का, जो भी आपके सर पर माथे पर है वो सब छीन चुका है जैसे ही आपकी नज़र मेरी नज़रों से मिली है। यानी आपकी जब नज़र, आपकी छाया, दृष्टिकोण मुझ पर पड़ी वैसे ही हर चीज़ छीन चुकी। आपसी करलीनी मोसे नैना मिलाए के, यानी कि आपके ही जैसा मैं बन चुका हूँ जैसे ही आपकी नज़र मुझ पर पड़ी है। ये एक इबादत की तरह ये गाना लिखा गया है, वो प्यार, वो जुनून एक गुरु के लिए जो है। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उससे पहले आपको अगला गाना एक और सुनाऊंगी रूना लैला की आवाज़ में, दमादम मस्त कलंदर। क्यों है ना इंटरेस्टिंग, कितने छोटे छोटे बातें हैं, छोटी छोटी बातें इन गानों में जो शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुने, ध्यान से समझें तो हर एक लाइन, हर एक चीज़, संगीत कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर लेकर आती है। बस इन कहानियों की तलाश है इन गानों के ज़रिए और आपकी बातों के भी ज़रिए। तो भूलिएगा मत, रिक्वेस्ट आर में आपकी कहानी ज़रूर सुनना चाहूँगी मैं, कहानी बचपन की। ये हिंट है हमारे अगले रिक्वेस्ट आर के लिए। टिल देन आप अगला गाना सुनिए और हमारा थीम जो होगा वो भी बताऊंगी व्हाइल वी लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।

0: बारिश
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
2: 6:33 ऑन द क्लॉक और अब अंदाज़े में प्रोग्राम में सूफियाना बंदगी के बाद अब रुख करते हैं हमारे उप शास्त्रीय संगीत यानी ठुमरी के उस नजाकत की ओर जहां विरह प्रेम और श्रृंगार के भाव सीधे दिल पर चोट करते हैं। बनारस घराने की वो मिट्टी जहां तान और सुरों का ऐसा संगम होता है कि शाम ठहर सी जाती है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Well, जब तक हम अपनी मिट्टी की लोक कथाओं और लोकगीतों से नहीं जुड़ते, हमारी शाम अधूरी रहती है। लोकगीत वो हैं जिन्हें किसी बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं होती। ये खेतों में, नदियों के किनारों से और सदियों पुरानी कहानियों से निकलकर हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंचते हैं। कई बार शायद आपने आपके ही घर में शादी ब्याह के माहौल में भी कई गीत सुने होंगे जो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो जज्बात आपको ज़रूर पता चल जाएंगे। कई बार ट्रेनों में, चौबारे पर बैठे, मंदिरों में, यही गीत तो हैं लोकगीत, हमारी धरोहर। आज आपको ले चलती हूँ पहाड़ों और पंजाब की उन लोक कथाओं के बीच जहाँ हीर रांझा और सस्सी पुन्नू की रूह आज भी लोकगीतों में जिंदा है। जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो गाना तो शायद ना मिले मुझे, लेकिन हाँ, ये अगला गाना जो जब तक है जा मूवी में आपने सुना है,

शायद अगर आप उसे अलग नजरिए से सुनने की कोशिश करें तो आपको मिट्टी की खुशबू इस गाने में जरूर महसूस होगी। हर्षदीप कौर की आवाज में अगला गाना।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: चलिए अंदाजे बयां का ये रूहानी सफर अब कुछ ही देर में मुकम्मल होने को है, लेकिन उम्मीद है कि इस घंटे में सूफी ठुमरी लोकगीतों की थोड़ी बहुत झलक आपको जरूर मिली होगी और आपके पूरे दिन की थकान कहीं ना कहीं इस जादुई माहौल के जरिए सुकून में जरूर बदली होगी। वेल, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में दो गानों के उस पार जहां आपका फेवरेट रिक्वेस्ट आर हम तुम शुरू होने वाला है, जहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू द थीम, आज की थीम है कहानियां। ऑफकोर्स बिना कहानियों के रेडियो का मतलब क्या है, मैं आप सभी को जानती हूं आपके नामों से, लेकिन मुझे आपकी कहानियां जाननी है। वो कहानियां जहां पर आपके बचपन में आपकी फेवरेट कुल्फी कौन सी हुआ करती थी, कौन से गेम्स आपके फेवरेट हुआ करते थे, वो याद जो कहीं ना कहीं आप शायद दौड़ती भागती जिंदगी में भूल चुके हो। मैं जानती हूं बहुत मुश्किल होती है कहानियों को गानों के साथ जोड़ना, इसलिए तो अगली बार यानी पिछले प्रोग्राम में आप सबों को बहुत मुश्किल हुई कहानियां याद करने के लिए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हम इतना आगे जिंदगी में बढ़ चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारे अतीत में कुछ ऐसी भी यादें हैं जो हमें संजो कर रखनी है। बस उसी संदूक को खोलना चाहती हूँ। आपकी कौन सी वो कहानी है जो अभी भी आपकी आंखें नम करती है, जो आपके दिल के करीब है, और वो गाने जो उन्हीं कहानियों से जुड़े हैं, वो गाने जो वो कहानियों को जिंदा करते हैं। बस वैसी कहानी मिल जाए तो आपकी फरमाइश ऑन एयर होगी, यकीन मानिए, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट पूरी होना तो ये मुश्किल, बहुत बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन कहते हैं ना, लकी ड्रॉ में आपकी मेहनत दिखती है। आपकी मेहनत ये है कि आपको उन यादों की अलमारी को खोलना है बस। और वैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8657661071 पर, और मैसेज करके बस दिल की बात बतानी है। वेल, जब तक आप लिख रहे हैं मैसेज, तब तक ये अगले दो गाने आपके लिए, जगजीत सिंह की आवाज में पहला गीत और उसके बाद मेहंदी हसन की आवाज में, बैक टू बैक दो गाने, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1।

7:15 ऑन द क्लॉक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, जहां आपका फेवरेट रिक्वेस्ट आर हम तुम शुरू हो चला है और पहला गाना इज डेडिकेटेड टू ऑल द लिसनर्स लिसनिंग टू मी।

राइट नाउ. अंकित जी हमें बहुत ही शुरुआत में मैसेज कर चुके थे जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ लव यू जिंदगी, कि गम का कोटा ज्यादा है. तो बस इसी बात पर मुझे ये गाना बहुत अच्छे से याद आया कि जिंदगी की राशन में गम का कोटा ज्यादा है, तो बस इस कोटे को भले ही आप कम ना कर सको, लेकिन ये गाना गुनगुना के लाइट जरूर हो सकते हो. फुल वॉल्यूम पे ये गाना सुनकर मैंने जो इंजॉय किया, यकीन मानिए अगर आपके भी लाइफ में गम का कोटा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो या तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि कौन से गाने आपको सुनाने हैं, या फिर आप यही गाना गुनगुना लीजिए. वेल, आज वक्त ऑफ कोर्स एज यूजुअल हमारे पास कम होता है एंड रिक्वेस्ट बहुत सारी है, सो दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द लिसनर्स. अगर आपकी रिक्वेस्ट पूरी ना हो पाए, क्योंकि कहानियां जो हैं वो तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन इस बार कहानियां आपकी हैं. और ये कहानी हमारे पास आई है राकेश माथुर जी की. उससे पहले अरविंद कुलकर्णी जी का भी हमारे पास मैसेज आया है. वो कहते हैं, मुझे स्कूल के टाइम में मैथ्स और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट बहुत कठिन लगते थे. मैं अपना विश्वास खो बैठा था, लेकिन आज सब इजी लगता है. ये सोच के बहुत दुख भी होता है, लेकिन इसमें प्राउड होने वाली बात है ना, जो आपको शायद ए बी सी डी मुश्किल लगता हो पहले, अब वही पर्राटे से आप पूरी सेंटेंस बोल लेते हैं, कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट हो जाती है. अ आ ई से आपने शब्दों को बुनना सीख लिया. तो जरा सोचिए, आप इसी तरह अगर बिना मन के भी कोई चीज शिद्दत से करना शुरू कर दें तो कोई चीज मुश्किल नहीं है. तो ये खुशी की नहीं, प्राउड होने वाली बात है कि आप ने आपकी जिंदगी में कहां से कहां तक का सफर निकाला है. जरा सोचिए और ये सफर आप लोगों को बताइए ताकि वो भी इंस्पायर हो सके. विद दैट आपको अगली कहानी बताती हूँ राकेश माथुर जी की. वो कहते हैं, बचपन में फिल्म देखने का बहुत शौक था मैम. हमारे बचपन में हमें बाहर जाने और खेलने की आजादी थी. जब मेरे शहर में फिल्म जानी दुश्मन लगी तो वो एक नए सिनेमाघर की पहली फिल्म थी और सिनेमाघर शहर के आउटस्कर्ट्स में था. मैं जिद करके अकेला फिल्म देखने 3 से 6 वाले शो में चला गया. अब फिल्म लंबी थी और सिनेमाघर दूर, तो इसी कारण घर रात 8 बजे पहुंचा. मेरे दादाजी और पिताजी ने मुझे बहुत डांटा और साल भर तक अकेले फिल्म देखने नहीं जाने दिया, और मैं तब 13 वर्ष का था. वेल, इसी फिल्म का वो गाना सुनना चाहते हैं. यही तो बात है, आप लोगों को भी बहुत डांट पड़ी होगी. कई बार आप लोगों ने अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने बड़ों की बात जरूर काटी होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मजा भी आया होगा. नहीं तो अब हम क्यों रिस्क नहीं लेते? सोचिए सोचिए. तब तक ये अगला गाना राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट. एंड हाँ, आपकी अगर रिक्वेस्ट पूरी करनी है तो चीटिंग तो नहीं होने वाली है. आपको कहानी जरूर बतानी होगी. थोड़ी मैं लालची हूं कहानियों के मामले में. तो आप कहानी सुनाइए और आपके गाने होंगे प्ले ऑन एयर.

722 ऑन द क्लॉक और आप सभी की फरमाइशें मिल चुकी हैं मुझे, आपके मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ। यकीन मानिए अगर आपके मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े वो इसलिए क्योंकि अब तक मैं 2-3 मैसेजेस पढ़ पाई हूँ और आप सबकी कहानियाँ भी पढ़ रही हूँ। यकीन मानिए भले ही आपके गाने ना प्ले हों लेकिन आपकी कहानियाँ मुझ तक ज़रूर पहुँच रही हैं। विजेंद्र घाटोल अकोला से राजेंद्र परमार जी हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी ऑल्सो हैव यवतमाल से सुरेश कुमार, कहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है मुझे मैम और डांट भी पड़ी है। ऑफ कोर्स ये बचपन में सभी को डांट पड़ी होगी, मैं जानना चाहती हूँ कौन सी चीज़ों पर आपको डांट पड़ी है। ये तो बातें होती है, बताइए सर, चटपटी मज़ेदार गॉसिप करेंगे हम आज। प्रमोद चिंचोलकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी कहानियाँ भी पहुँच रही है। अजय साखरे इंदौर से, मुकेश कश्यप जी, दीपा पालकर, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, बलकरण वर्मा, सुशील यादव, रेणु यादव, हीरामणि वर्मा, पंकज माहौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरावती से, चेतन कुमार, फिरोज सिगन पुरिया, वैदेही जी है, संजय पाटिल, प्रणव शिंदे, बाबा दादर से जो हमेशा हमारे साथ गाने सुनते हैं बिना कोई फरमाइश के, इसे कहते हैं सेल्फलेस लव फॉर म्यूजिक, दत्ता केदार पंडरपुर से, राकेश माथुर जिनका गाना भी आपने सुना, अशोक पाटिल वराली से, अरविंद कुलकर्णी, दिग्दर्शन और कविता मेरठ कैंट से, संजय दर्शन, दीप शाह एंड वी हैव भूषण सुनावनी, मुस्तफ़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई रिमेम्बर मुस्तफ़ा से मेरी बात हुई थी बहुत पहले, बहुत अच्छा लिखते हैं ये, प्रकाश शिंदे के बाद मुस्तफ़ा जी भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं। मुकेश वालिया देहरादून से, अंजू अंधेरी ईस्ट से, अंकित जिनके लिए मैंने गाना ये बजाया था फर्स्ट सॉन्ग गुनगुना रे वेल, श्रेया राउत, मिलेश गजानन राउत वड़ाली से, यशवंत आठमुड़े जी काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आप, श्रीधरन बालचंद्रन, शुभदा जी, आनंद मुकाशी, बाल भीम, बाला सुरे और यकीन मानिए रामदास तांबे डोंबिवली से, इसमें से आप सभी को हमारी बात हो चुकी है और मुझे बाकायदा याद है कि हम हमारे लिसनर्स कौन कौन हैं और हमारे नए लिसनर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी मुझे पता है। वेल, हमारे तो लिसनर्स हैं ही लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हाय भेज सकते हैं 8657661071 पर। यकीन मानिए बादाम तो मैं इतने खाती नहीं हूँ लेकिन हाँ याद ज़रूर रहेगा कि आप मेरे शो पर जुड़े थे एंड वी विल फॉर्म अ कनेक्शन बिकॉज गानों के साथ ये कहानियाँ भी यही तो करती है बॉन्डिंग। वेल विद दैट आपको अगला गाना सुनाने वाली हूँ, ये रिक्वेस्ट प्रकाश जी ने की है लेकिन एक्चुअली ये रिक्वेस्ट है हमारे वन ऑफ द लिसनर्स की, आयास चौधरी जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं लेकिन 2 दिन पहले उनके पिताजी का इंतकाल हुआ और बहुत ही इमोशनल फेज में है वो, तो उनके लिए, उनके डैड के लिए

इन पीस पे प्रे करते हुए ये अगला गाना प्रकाश जी ने रिक्वेस्ट किया है. एंड आई होप प्रयास जी, ऑफ कोर्स अभी शायद नहीं सुन रहे हमें, बट आई होप कि वो खुश रहें. और आई विल प्रे

7:33 ऑन द क्लॉक. राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 2008 से एफएम रेडियो सुन रहे हैं. वेल आई नो आप बहुत पुराने लिसनर हैं. हमारी मुलाकात लेकिन अभी हुई है, थोड़ी और जान पहचान बढ़ाएंगे. एंड पंकज माहौर जी हैं हमारे साथ विजेंद्र घाटोल अकोला से. संजय दर्शन जी ने बहुत ही प्यारा मैसेज हमें शेयर किया है कि कहानी तो बहुत है जिंदगी की, बचपन की, कॉलेज की, कॉलेज कल की प्रतियोगिता, दोस्तों के साथ रात भर जागने की, दोस्तों के साथ पंगे में शामिल होना, पीछे हटना, करना पहले प्यार उससे पाना और खोना, बहुत कुछ याद आ गया उन्हें. डर जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी उस वक्त. प्यार को याद करते एक ही गाना याद आता है उन्हें और वो कहते हैं कि आज हमारे अंदर के जज्बात को जगा दिया. यही तो मकसद था मेरा. हम अपनी ज़िंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को टटोलना भूल जाते हैं. तो बस उस दिल को जो धड़क रहा है और हर दिन अपना काम करता है, उससे आज पूछ लीजिए कि हाल कैसा है जनाब का. थोड़ा सुकून, बेमतलब की बातें, पुरानी यादें और सुकून. थोड़ी आंखें नम होंगी शायद, थोड़ी क्या, थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, इट्स ओके टू नॉट बी ओके. कभी कभी हर चीज़ सही हो, बढ़िया हो, ज़रूरी नहीं. लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हम हर उस हालात में मुस्कुराएं और उसे अपना लें. एक्सेप्टेंस. वेल, इसी के साथ फिरोज सिगनपुरिया जी हैं, राकेश माथुर जी, दत्तात्रेय आदत वेलापुर से जुड़ चुके हैं, राशि द्रविड़ हमारे साथ

जुड़ी हुई है प्रणव शिंदे, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश कड़ू वाढ़वन। धनंजय नवी मुंबई से हमारे साथ हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी, एंड वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ लिसनर्स, मुकेश कश्यप जी मुरादाबाद से, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बालवीर सिंह, एंड वी हैव लॉट ऑफ लिसनर्स। और मुझे पता है आप सभी को आज बहुत शिकायत होने वाली है, क्योंकि यकीन मानिए फोन लाइंस बैक टू बैक बज रही है। महादेव पाटिल हमें सुन रहे थे और हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि लाइंस थोड़ी खराब है। एंड आई नो आप लोग फोन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन अफसोस क्या करें, वक्त किसी के भी लिए कहाँ रुकता है। हमारे पास जितना वक्त है बात कम करते हुए आपको गाना सुनाती हूँ। पहले श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ में अजय साखरी जी की रिक्वेस्ट है, और इससे पहले जो आपने गाना सुना वो दीपा पालकर जी की रिक्वेस्ट थी और उन्होंने भी अपनी कहानी हमसे शेयर की है, और ये उनके डैड के लिए है। ऑफकोर्स ये गाना जो आप इतना इमोशनल सुन रहे हैं ये आपको कहानी में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये गाना सुनिए श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ में, और उसके बाद अगला गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

वेल, दीपा पालकर जी हमें मैसेज कर रही हैं कि उनके पिताजी ने एक बार ऐसे ही उनके एक दोस्त को, बहुत मुश्किल हो रही थी उनके बिजनेस में उनके पिताजी को, और उनकी मदद की थी, और दीपा पालकर जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके दोस्त की मदद करें, और क्योंकि उनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो थी वो थी नहीं उस वक्त, और बहुत टाइम तक उन्होंने मदद की, और उसके बाद जैसे ही उनके घर की हालत ठीक हुई वो लोग बहुत ग्रैटिट्यूड में थे उनके पिताजी को लेकर, शुक्रमंद थे, और इसी चीज़ से इंस्पायर हुई दीपा जी कि जब कभी मौका मिले आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए जिन्हें आपकी ज़रूरत हो, और ये चीज़ उन्होंने उनके पिताजी से सीखी, और इसीलिए वो दिलबरो गाना सुनना चाहती थी, और ये गाना उन्हें उनके पिताजी के रिश्ते, उनका जो रिश्ता है उनके पिता के साथ में, वो उस रिश्ते की याद दिलाता है। देखिए, कहा था ना, कई बार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम अपनों से नहीं कह पाते, लेकिन उन गानों के ज़रिए हम उस रिश्ते को और उस रिश्ते की गहराई को महसूस कर पाते हैं, और हमें एहसास होता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। भले ही हम कितना भी झगड़ लें, रूठ लें, पर जो रिश्ते हमारे ज़िंदगी में हैं, चाहे वो माता पिता हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, वो आपसे कभी दूर नहीं जाते, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही तो यही है, रिश्ते बुनना, रिश्ते बनाना, लोगों से मिलना, बातें, कहानी।

कहानियाँ, इन्हीं से तो ज़िंदगी बनती है पूरी। और बहुत सारी कहानियाँ आई भी हैं हमारे पास, पर एज़ यू नो ठीक 8 बजे मेरे जाने का वक्त हो जाएगा और आप सबकी कहानियाँ यकीन मानिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, और अगर ऑनर ना हो सके लेकिन आपकी कहानियाँ ज़रूर मुझ तक पहुँच रही हैं। और मोस्टली हर कहानियों में कोई कुल्फ़ी खा रहा है। चेतन कुमार जी कहते हैं कुल्फ़ी हमें पहले मटके में मिलती थी, अब लेकिन मुश्किल है, कोई गोला

नसवाला चौक मलकापुर से उषा पाटिल, संजय पाटिल। अब बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट कोशिश कर रही है, लेकिन अगर पूरी ना हुई तो यकीन मानिए ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आप जो शायद चाहते हैं वो ना हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट आवर कल भी होगी। कोई और आरजे होगा, गाने कोई और होंगे, नाम कोई और होंगे, शायद आपका भी नाम उसमें हो। हमारे रिक्वेस्ट आवर हमेशा चलते हैं, दैट इज़ 1 से 2 के बीच हिट एंड हॉट, और 7 से 8 हम तुम। सो अगर आज ना सही तो कल सही, उम्मीद लेकिन चलते रहने चाहिए, है कि नहीं। वेल विद दैट आपको सुना रही हूँ अगला गाना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

7:52 ऑन द क्लॉक और मेरे जाने का वक्त. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स विथ मी आरजे भावना, जहां पर हम तुम रिक्वेस्ट आ रहा आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम था. एंड आई एम श्योर सभी की रिक्वेस्ट पूरी तो नहीं हुई है, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन एज आई सेड, रिक्वेस्ट आर सिर्फ आज ही के लिए नहीं है, कल भी दिन आएगा और आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. लेकिन मुझे एक सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि आप सबकी कहानियां वो सच में इतनी प्यारी है, मुझे पढ़कर पता चल रहा है कि आपने कितने दिल से उन यादों की अलमारी से वो बातें निकाली हैं और मुझ तक ये चीज़ पहुंचाई है. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने वो बात शेयर की है. और यकीन मानिए, जो कहानियां रह गई हैं या फिर जिनके आपको रिप्लाई नहीं मिले हैं, संजो कर रखिएगा, क्योंकि जब दोबारा मैं आऊँ रिक्वेस्ट आर तो आपको पता है एज यूजुअल कहानियों के साथ ही आपके गाने होंगे प्ले. वेल विद दैट, आखिरी गाना आपको छोड़े जा रही हूँ सुनाते हुए. मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ सुनना चाहते हैं याराना से गाना, क्योंकि आज नागपंचमी है, इस अवसर पर वो ये गाना सुनना चाहते हैं. और जिनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई है उन सभी के लिए ये गाना डेडिकेटेड है. एन इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं दोबारा बस चलते चलते. उम्मीद और इंतज़ार दोनों बरकरार रखिएगा.

0: जारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से

0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
1: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते

0: उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। घर घर
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे

0: दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
1: केंदुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
3: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi and 44 from Punjab. Substantial recoveries including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Sajad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. SBN has also been playing local conduits to recce police, defense and religious sites and to install CCTV.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो।

0: रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: आंखें दिल का आईना होती हैं, बिना कुछ कहे ही सारी बात कह जाती हैं। इन आंखों की मस्ती ने ऐसा किया असर, हमने देखा उन्हें और खुद को ही भूल गए।

आंखें कई बार बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देती हैं, बता देती हैं क्या चल रहा है आपके दिल में, क्या है हालात इस दिल के। लेकिन जब दिल के हालात होठों से छूकर गीत के रूप में निकलते हैं तो सीधा दिल में उतरते हैं, और जब दिल में उतरते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत बन जाता है और हर एहसास अमर हो जाता है। होठों से छुआ तो नख्मा बन गया हर एहसास, मोहब्बत ने छेड़ दी दिल में एक मीठी सी प्यास।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: सुरों से सजी महफिल में आप सुन रहे हैं रंगी महफिल, आपके सफ़र की हम सफ़र सीमा के साथ हो रही हैं दिल के बात और सुन रहे हैं वो गज़ल जो कहीं ना कहीं आपके बीते हुए लम्हों को फिर से दोहरा देती हैं। दिमाग में जहन में बहुत कुछ याद आने लगता है क्योंकि इस रात में तन्हाई होती है, खामोशी होती है, एक सुकून होता है और यही वो लम्हे होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए समय देते हैं, अपने कुछ पुरानी यादों को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं और जब छिड़ती है बात तो बात होती है रात की, बात की, फूलों की। तो क्यों ना आज उन खूबसूरत यादों को भी अपनी इस महफिल में हम सजा लें जहां हर खुशबू में मोहब्बत, हर पल में एक कहानी और हर गीत में एक दिल की बात है। रात फूलों की थी, खुशबू का नशा छाया था, याद तेरी आई तो फिर दिल ने एक गीत गाया और वो गीत कहीं ना कहीं जो अपने दिल की कहानी कहेगा कहीं। और यकीन मानिए जब हम इन गज़लों को कभी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद लिखने वाले ने, शायर ने हमारी ज़िंदगी की ये पूरी कहानी लिख दी जो हमारे साथ बीता, जो हमारे साथ वाक्या बीता, हो बहो कुछ इस तरह से इस गज़ल में है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गज़ल को जो बात कहती है रात की, जो बात छिड़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी सुनेंगे आप।
1: ये जितनी मुश्किल से मिली हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रागी महफिल, आपके सफर के हम सफर सीमा के साथ। शुरू से सजाइए सफर, इंजॉय कर रहे होंगे आप उम्मीद है। दिखाई दिए यूं जैसे खामोश रात में चांद तराया हो, नजरें मिली तो लगा कोई रूहानी सा एहसास दिल को छूकर गुजर गया। तेरी एक झलक ने रूह तक को रोशन कर दिया। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और एनसीआर में आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर हम आपके साथ लगातार बने हुए ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। सुनने के लिए और एंजॉय करने के लिए बस ट्यून इन करिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

म्यूजिकली आर्ट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक दिल की बात जो होती है बहुत खास, बिना कुछ कहे पहुंच जाती है हमारे पास। बात करें कुछ बातों की, कुछ दिल में आस होती है, कुछ फरियाद होती है। कोई फरियाद दिल में दबाकर रखना भी अजीब है। लब खामोश रहे मगर आंखें हर राज बयां करते हैं।

कभी कभी जिसे हम पुकार नहीं पाते, वही तो हमारी सबसे गहरी फरियाद बन जाती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? कोई याद, कोई बात, कोई फरियाद बन गई हो? वैसे तो शायद ही कोई ऐसे हो जिनके साथ ऐसा हुआ ना हुआ हो कि मतलब कोई बात हम जो चाहते हो और वो ना हो पाई हो। हम सभी के

अब इजाज़त दीजिए, मगर ये विदाई सिर्फ आज की महफिल से है, दिलों से नहीं। कुछ मुलाकातें ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती, वो याद बनकर हमेशा हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं। रुखसत तो हो रहे हैं मगर दिल यहीं रहेगा, महफिल से दूर होंगे पर ये रिश्ता बदस्तूर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नए गीत, नई शाम और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 12 बजने जा रहे हैं। लीजिए, अब आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मुज जलडमरू

पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 12:02 और 8 सेकंड्स। और लीजिए श्रोताओं, आपका इंतज़ार ख़त्म। आपके लिए लेकर आए हैं जीरो आर शो। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक और मैं रहूँगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रज़ा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बताइए साथियों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहिए आप, और एंजॉय कीजिए इन गीतों को।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्रोताओं, तो ये था कार्यक्रम जीरो आर शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपको छोड़े जाती हूँ उस गीत के साथ, और एक बजे आपके साथ होंगी प्रीति कमल। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

तो श्रोताओं, समय हो गया है 1:04 और ये वक्त है मुख्य समाचार का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने 2024 की JSSC CGL परीक्षा और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में हो रही BWF बैडमिंटन

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शी यू की को हरा दिया। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: तो आइए श्रोताओं, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम सुहानी रात का। मैं हूं आपके साथ प्रीति, और आइए पहला गीत सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

मैं एनी। मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात, और इस कार्यक्रम में मुझे यानी प्रीति कमल को दीजिए अनुमति। और आइए अब प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल ने काठमांडू में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत की सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपेक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया है।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 2:03:12। डीजे भाई सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आय हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब हम यहीं संपन्न करते हैं। 3 बजे श्रोताओं आपके बीच होंगी प्रीति। अलमास रजक को यानी मुझे अब अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 3 बज गए हैं रात्रि के और ये वक्त है मुख्य समाचार का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघर से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल ने काठमांडू में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, रात के 3 बज चुके हैं और ये वक्त हो गया है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो शुरुआत करते हैं पहले गीत को सुनने से, जो कि है फिल्म बाजीगर से और आवाज है कुमार सानू की।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कार्यक्रम मेलोडी मिडनाइट मेलोडीज में ये रहा आपका आखिरी गीत, और अब 4 बजे होंगी आपके साथ अलमास रजा।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, और लीजिए आप पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया। आज भी कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में हो रही BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के दुनिया के नंबर एक के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियुकी को हरा दिया। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: साथियों स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:02 और 53 सेकंड्स और लीजिए भाई सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।